0: रेडियम रेट 345 सर्विस से मीटर टन या 77 किलो हर्ट्ज से
1: खास तब्दीली नहीं
2: मिशन
1: फोकस

0: तांदूळ आणि कापूसला हानी पोचविणारे कीटाणूंचे नाश करणारा नागार्जुना
1: और साथियों के गाए कुछ लोक गीत
2: दूसरा मन
3: तो मैं खोना पड़ जाएगा।

जो सपने देखे गए उन मंजिलों की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत होगी। सबको लेकर चलेंगे साथ, सबको बांटेंगे प्यार और देंगे प्यार।